आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha.
1: Tanisha. Arijit Singh aur Harshdeep Kargi awaz mein Rais movie se beautiful drag Zalim Ali on Radio 106.3 FM. Tanisha aage ji aapke saath bindas mornings lekar a very good morning meri jaan. Sunday ka din August 16th naye hafte ki shuruaat I hope full josh aur enthusiasm ke saath hogi. They say na every day is a new opportunity. Waise hi lena hai har hafte mein bhi humne yahi manna hai. Theek hai? कैसे आप क्या हाल चाल है कैसा रहा आपका वीकेंड एंड फिलहाल क्या कह रहे हैं उठ चुके हैं अभी उठे हैं ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं निकल चुके हैं व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन जानना चाहती हूँ मैं 3311-1063 पर
2: देखो जरा देखो नाम तेरा लिखा है
1: बड़ा ही सुंदर गाना है यार ये मतलब यू नो कि दैट काइंड ऑफ लव कि बस अब तो सब तेरा ही हो गया है वैसी वाली फीलिंग देता है ये सॉन्ग और ये जो अगला गाना है ओहो क्रेजी

0: क्रेजी मूवी थी भाई, और इंडिया में ऐसा कुछ हो भी रहा है इस वक्त तो।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: ओए होए, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज ऑल्सो कमिंग, और साथ में

देखो याद आनी तो बनती है ना, मुझे भी आपकी बड़ी याद आई वीकेंड पे, आई होप आपको भी मेरी याद आई होगी। तो फटाफट से आ जाओ 3311063 पर मैसेज करो। दोज हु हैव ऑलरेडी यू नो आर ऑन द वे टू द वर्क, बस में है, ड्राइव कर रहे हैं किसी के साथ, पैसेंजर प्रिंसेस और किंग बन के, किंग नहीं प्रिंस बन के बैठे हैं, तो मैसेज कर दो यार। जो ड्राइव कर रहे हैं उन्हें नहीं करना है, ठीक है? आपने जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ या फिर यू नो लाइट पर रुको तब कर देना, मैं इंतजार कर लेती हूँ यार। हाँ जी, आपकी सेफ्टी इज फर्स्ट, मैसेज भले ही आप बाद में कर देना, ठीक है मेरी जान। फिलहाल सेंडिंग नीलांजना की आवाज में मस्कारा ओनली ऑन रेडियो लव जो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा।
1: अरमान खान की आवाज में हक मूवी से कबूल है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, कहती हैं, एज आई स्टार्ट माय डे आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू लेट यू नो हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। गुड मॉर्निंग, दैट इज सो स्वीट इफ इट वॉज मेंट फॉर मी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आईने में देखकर खुद को भी ये बोलिया करो और अपने आसपास जो लोग आपके लिए स्पेशल हैं, कीमती हैं, प्राइजलेस हैं, उनके लिए भी, उन्हें भी बोल दिया करो। समझ रहे हो आपको? यू नो, कभी कभी महसूस करवाना कि कोई इंसान हमारी लाइफ में कितना स्पेशल है बहुत ज़रूरी होता है। बाय डिफॉल्ट तो देखो द फीलिंग्स एंड द वे वी टॉक टू देम और बिहेव विद देम वो बताता है, बट कभी कभी बोल के बता देना भी अच्छा होता है मेरी जान। एंड अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग आया है, मुझे फूलों और कॉफ़ी के साथ, ओए होए साथ में कुकीज़ भी हैं। और संधू जी का भी गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स, होप एंड ऑप्टिमिज्म, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद ऑल लव, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरपाल संधू फ्रॉम दुखन सिक्रेट जियो बिंदास, थैंक यू सो मच संधू जी। और शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, कहते हैं, थॉट ऑफ द डे, Being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the life of others. And that is so, so, so true. And Jasa ji ka bhi good morning hai. Good morning ji. Aur saath mein mujhe Zakir Mohammed ka message aaya hai. Hi Tanisha, morning. Enjoy today, I work so hard. Oh ho ho, aapka kaam khatam ho gaya hai aur you are like starting, aapka aaj ka din hard hone wala hai. थोड़ा बताएं मुझे जाकिर जी। और यासिन अब्बासी जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है जी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब मेरी स्पेशल वाली गुड मॉर्निंग तो मैंने मिस ही कर दी यार।
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
1: आय हाय,
2: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस।
1: बस ऐसे गुड और नाइस लगते रहना और बढ़िया दिन जाने वाला है जी। हाँ, अभी भेज रही हूँ बहुत प्यारा गाना नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, प्यारे स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास।
3: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Tanisha.
1: Kavita Krishnamurthy aur Udit Narayan sahab ki awaaz mein Nayak movie se chalo chale with the only on radio 106.3 FM Tanisha aapke sad bindas morning chal raha hai yahan par aur is din mein aage chalne ke liye ek bahut pyari si baat main aapke liye lekar aayi hu. Just like how Instagram has its own algorithm na, jo bhi cheeze aap dekhte ho like constantly agar aapne kisi reel ko dekh liya aur bar bar same type ki cheeze aa rahi hai, that is basically Instagram's algorithm working that way ki jo cheez aap dekh rahe ho aapko pasand aa rahi hai aap jis pe zyada waqt bita rahe ho wahi wo aapko dikhayega. Same way universe ki hamari life ki bhi algorithm hoti hai. Jin bhi cheezon ke bare mein aap zyada sochoge, you know, jin bhi emotions ko aap apne upar zyada haavi hone doge, focus karoge jin cheezon ke upar, aapko life mein wahi milega. That is why I keep saying ki let's focus on the positive side, hai na? Perspective change karke dekhte hain. Agar kabhi lag raha hai ki yaar ye to galat hi ja raha hai, aad tedha rasta ho gaya ye to, तो उसमें पर्सपेक्टिव चेंज करना है या फिर यू नो ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू इन लाइफ. और अच्छा अच्छा सोचो अपने लिए कि भाई मेरे साथ तो ये होने वाला है, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा वो जॉब लग जाएगा इफ़ आई वांट दैट, मेरा यू नो इफ यू आर स्टडिंग तो मैं तो टॉप करने वाली हूँ, वॉट एवर. उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो सोचो एंड यूनिवर्स विल हैंड इट टू यू. ऑब्वियसली एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, कहोगे वरना मैंने तो सोच लिया पर हुआ नहीं. तनिषा नहीं एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं बट सोचना भी होता है मेरी जान. सो ऑलवेज थिंक द बेस्ट फॉर यू. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी पटियाला हाउस. स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस मेरी जान.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे. Radio Olive

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha.
1: Suniti Chan ki awaaz mein yaaram from the movie ek thi da yani you're listening to Radio 106.3 FM Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain abar
2: Jams.
1: So maine aapse pucha tha ki Varun Dhawan ki mummy ko kya kahenge aur mujhe bilkul disappoint nahi kiya gaya hai. I've got answers over here. Irfan ji ka sabse pehle message aaya hai, then mujhe SK ka message aaya hai aur kisi ke naam mein sirf dot hai, naam nahi hai, dot ka message aaya hai. Halt HLT ka message aaya hai. Then there is Akram ji, there is hi. So yeah, please apna jab bhi answer bhej rahe ho na, naam zarur likh diya karo, to be on the safe side. ठीक है, क्योंकि ये डॉट हॉल्ट ये तो मैं नहीं पढ़ सकती ना, नाम आपके ये तो नहीं है, मुझे पता होना चाहिए किसका मैसेज आ रहा है मुझे. सो भेज दिया करें अपना नाम लिखकर. एंड यस, करेक्ट आंसर इज माधवन. आई नो, देखो ऐसी लाइट और यू नो सिली चीजों से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन भी ऐसा ही लाइट, फन एंड यू नो फुल ऑफ लाफ्टर और उस एनर्जी के साथ जाएगा. बस इसी की कोशिश है मेरी जान. और बाकी कमाल गाने तो देखो

वैसे आप कहेंगे कि तुझे तो हर ही गाना पसंद है तनिषा। तो सही बात है, मुझे सारे ही गाने पसंद है। वी आर सो लकी टू हैव म्यूजिक इन आवर लाइव्स यार। All these amazing tracks are lined up for you in this hour. लेकिन फिलहाल भेजू रेखा भारद्वाज और राघव की आवाज में मुसाफिर कैफे से हम तेरी होते तो। बहुत सुंदर गाना है। Stay tuned on Jio Vindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Rashmeet Kaur aur Sachin Jigar ke awaaz mein Thumke Sharif from the movie Bhediya only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain ab. Aaj thoda better hai. ठीक है, मैं लाइक पर तो पूरी तरह से नहीं पहुंची हूँ, पर हाँ ओके, अभी आई एम नॉट लाइकिंग वाली सिचुएशन भी नहीं हो रही है, बिकॉज राइट नाउ द वेदर इज 38 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 38 आफ्टर सो लॉन्ग. अदरवाइज यही हो रहा था कि अगर 38 है तो आप 48 ही फील कर रहे हो. सो इट इज़ बेटर टुडे, बट स्टिल इट्स गोना बी हॉट. यू नो, थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने दो, दिन में हॉट हो जाएगा सर. हाईएस्ट विल बी 43 एंड लोएस्ट विल बी 34. आप फिर भी हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, लाइट खाना खाइए और अपना ख्याल रखिए और भर भर के सनस्क्रीन लगाइए. ठीक है मेरी जान, आप इम्पॉर्टेंट हो, आपने अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना है. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद दिलाती रहूँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये सब करना है. Sending an amazing track your way, Adif Aslam aur Jyothika Tangri ke awaaz mein, Laila Majnu se O Meri Laila. Stay tuned on Jio Bandaas.
1: Ab suniye Olive ka zabardast hit.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

चमेली मूवी से सुनिधि चौहान की आवाज में सजना में सजना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दिनेशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कतर में आने वाला है कतर का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. यस, जो ईवी व्हीकल्स हैं, ईवी इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ओनली, अभी वो कतर में मैन्युफैक्चर होंगे. एंड दैट इज सच अ ह्यूज स्टेप, यू नो, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंट्री में जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा पावर मूव होगा. एंड दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स. और ये जो इनिशिएटिव है, इट इज अ पार्ट ऑफ कतर्स पुश टुवर्ड्स क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. यू नो, उसके लिए काफ़ी काम किया जा रहा है. एंड दिस इज वन ऑफ दोज. इट कुड क्रिएट न्यू जॉब्स, ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, सुन ली गई है आपकी, जल्द ही कुछ अमेजिंग आने वाला है. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑल्सो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ कतर्स ईवी इकोसिस्टम इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और वाई दिस मूव इज यू नो सच अ बिग डील, बिकॉज ये डाइवर्सिफाई कर देगा यार जो हमारी इकोनमी विच इज बेस्ड ऑन ऑयल एंड गैस, उससे आगे भी नाउ वी विल हैव दिस, यू नो, कि हम ईवी इकोसिस्टम में भी हैं. दैट विल ऑल्सो ब्रॉडर आर इफेक्ट in the economy, and that is really really cool. Looking forward to it and looking forward to this song also jo aane wala hai. Javed Bashir sahab ki awaaz mein slow motion angreja from the movie Bhag Milkha Bhag. Stay tuned on Jio Bindas.

0: Tanisha.
1: Blockbuster in the voice of Zulfi and Farid Shafi only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. And yaad dilani aa gayi UG ki back to school is back. Aur jaldi se register kar lo apne bachcho ko because bahut kam slots hain aur registrations will close soon. So fatafat se jaye radioolive.qa par. वहाँ जाए और अपने बच्चे को रजिस्टर कर ले. देर इज़ अ बैनर बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए. 27th August को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में फॉर बैक टू स्कूल बैश, दोपहर 3 to 7 PM. तक बहुत सारा फन होने वाला है. क्रेजी गेम्स हैव बीन प्लान्ड, चैलेंजेस, यू नो, डांस, मस्ती, एवरीथिंग विल बी देयर. स्कूल स्टार्ट होने से ये पार्टी, स्कूल स्टार्ट होने से पहले ये पार्टी तो बनती है ना, डिजर्व करते हैं. जी हाँ, तो फटाफट से फॉर्म को फिल करें, रजिस्टर करें. स्पॉट्स आर लिमिटेड. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस दिस आउट मेरी जान.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: बिंदास
3: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थ केयर।
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Nasim Healthcare.
5: Oh no, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
6: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
7: एंड दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
8: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
9: कॉल 7022525।
10: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
11: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: खास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Guys, this is Jonita Gandhi. Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm a number one. You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas. Radio
3: Olive, I'm a number one. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: कारवा फ्रॉम द मूवी धुरंधर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और भैया बच्चों ने एक नया टर्म शुरू कर दिया है जी. नाउ जेन जी जेन अल्फा जो भी है जो भी कर रहे हैं ये यूथ बर्थडे दे हैव स्टार्टेड सेइंग यूथ बर्थडे. और वो किसी को बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है. नो दे आर सेइंग कि तुम फुल ऑफ जॉय हो, तुम फुल ऑफ हैप्पीनेस हो. सो वेन एवर दे सी समबडी यू नो इन गुड स्पिरिट्स, गुड एनर्जी, गुड वाइब्स, तो वो कहते हैं यूथ बर्थडे. So I wish all of us are you the birthday today and you know full energy aur joy ke saath pura din hum bitaye. Filhal bhej rahi hu bahut energy se bhara hua gana Dilair Mehndi sahab ki awaaz mein. Ho jayegi balle balle, stay tuned and Jio Bindaas. Cool song. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour. Song of the
1: hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Cool song.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: absolutely enjoy this track. Yeah, Ticket to Hollywood. You're listening to Radio Hollywood 106.3 FM. Tanisha, aapke is Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par.
1: Ye hai Chalti Phirti Dictionary.
0: और आज जो मैं वर्ड लेकर आई हूँ डिक्शनरी से वो है ओबिस्क्विस. और जैसे ही मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई इंसान का चेहरा पिक्चर आ जाएगी और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि

सही है. सो ओबिस्को इसकी स्पेलिंग है OBSEQUIOUS. ओबिस्को इज बेसिकली चापलूस. ऑफिस में कौन है बॉस का चमचा? यस, दैट पर्सन हूएवर इट इज विल बी कॉल्ड ओबिस्क्यूस, हु इज लाइक टू ईगर टू प्लीज समवन. की भाई गुड बुक्स में रहना है, प्रमोशन तो मेरा ही होगा, सैलरी तो मेरी ही बढ़ेगी. सो बॉस ने जो बोला है हर चीज में, यस सर यू आर करेक्ट सर, सर आप कभी गलत बोलते ही नहीं हो सर. वो वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना जिनका, उन्हें कहते हैं कि दे आर टू ऑब्स्क्यूस. ओ माय गॉड. किसी ना किसी का चेहरा तो आ ही रहा होगा जहन में, और चेहरे पे मुस्कुराहट आपके आ रही होगी. बस इस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए. फिलहाल भेज रही हूँ सैफ अली खान साहब का फलक तक इन द वॉइस ऑफ उदित नारायण एंड महालक्ष्मी. एंड आज सैफ अली खान इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो इसी बात पर सुनते हैं उनका स्पेशल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

पिया तो नहीं मैं जरूर आ गई. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और आज वैकी विजडम में एक बहुत ही कमाल की बात करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग. ओके, किस तरह से द स्टाइल ऑफ मार्केटिंग हैज चेंज्ड. एंड वो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट हमें ये महसूस कराते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है इसीलिए हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए. एंड दैट इज़ ब्रिलियंट यार. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आई एम गोना टेल यू वन एग्जांपल. दैट इज़ अ कैफे कॉल्ड कैफे पेले. इट वॉज इन यूके. एंड वहाँ पर व्हाट दे डिड सबवेज में वो बड़े से यू नो एडवर्टीजमेंट द मोशन एडवर्टीजमेंट दे मेड ऐसे टीवी वाले में. या एंड देयर इज़ वन गाय जो कि सिर्फ यॉन कर रहा है, उबासियां ले रहा है. ठीक है, आप कम्यूटर्स जब जा रहे हैं वो देख रहे हैं और उबासियों का क्या है, वेन एवर यू सी समबडी योनिंग यू विल स्टार्ट योनिंग टू. इट इज़ वेरी कंटेजियस समहाउ. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. द मैन इज कॉन्स्टेंटली योनिंग एट दैट टीवी स्क्रीन एंड जो भी लोग देख रहे हैं उनका ध्यान जा रहा है और वो ना सेंसर डिटेक्ट कर लेता है. तो जब भी कोई पास से निकल रहा है तब वो और ज़्यादा यॉन कर रहा है. सो एवरीबडी स्टार्टेड यॉनिंग और ये चलता रहा. एंड एज सून एज इट डिटेक्ट्स कि भाई बहुत लोग यॉन कर रहे हैं आसपास, तो स्क्रीन पर आ जाता है आई थिंक यू आर रियली टायर्ड, यू नीड अ कॉफ़ी. एंड देन सडनली कम्स अ सेल्स वुमन फ्रॉम कैफे पहले और वो कॉफ़ी के शॉट्स लेकर आती हैं और वो सबको फ्री में कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं. सो बेसिकली दे क्रिएटेड एन अर्जेंसी एंड देन दे मेड यू फील कि भाई तुम्हें ज़रूरत थी इसलिए मैं ले आई. यार ज़बरदस्ती नहीं है कोई, पर एवरीबडी वॉज फीलिंग टायर्ड देयर बिकॉज ऑब्वियसली दे माइट बी कम्यूटिंग फ्रॉम वर्क और कहीं से भी आ रहे होंगे और थके तो ऑब्वियसली होंगे. एंड देन दे स्टार्टेड यॉनिंग. तो हमारे दिमाग में ये चलता है यार आई एम यॉनिंग टू मच, तो मेरे को थोड़ी नैप की ज़रूरत है. आई जस्ट वॉन्ट टू सिट आइडल फॉर अ वाइल. बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लिया है, थक गई हूँ आज. यू नो ऑल दोज फीलिंग्स कम अराउंड. सो उस टाइम पे लोगों को बस वही फील कराया गया कि यार आप थक गए हो, आपको कॉफ़ी की ज़रूरत है, ये आपको एनर्जाइज कर देगी और हम आपके लिए ले आए हैं. दैट इज़ सो ब्रिलियंट. और उसके बाद जो उनकी सेल्स ऐसे हाइक हुई है क्रेजी तरीके से, अमेजिंग, लव्ड इट. एंड ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक माशुका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. बाय द वे मैंने देखी इस वीकेंड. क्यों देखी मत पूछो, पर देख ली मैंने. ठीक है यार, स्टे ट्यून्ड एंजियो बिंदास. रेडियो

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: You're listening to Radio Olympus 6.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर पान की दुकान हुए बड़ा ही मजेदार गाना only on Radio Olympus 6.3 FM. Tanisha के साथ सुना आपने बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई कतर पोस्ट ने लॉन्च कर दी है नई मनी ट्रांसफर सर्विस टू इंडिया एंड दिस इज वे मोर फीजिबल देन यू कैन थिंक बिकॉज आप इसके थ्रू डायरेक्टली UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं इंडिया में. Yes, yesterday was Independence Day और उसी दिन लॉन्च की गई है ये जो सर्विस है. कतर पोस्ट ने जो कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है विथ इंडिया पोस्ट एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU एंड जिसके थ्रू आप UPI में पैसे भेज सकते हैं. Cool, right? It's called Post Transfer Service and aap iska istemal kar sakte hai to send money to your family members in India and it'll become more easier, you know. UPI mein instantly aa jata hai and whatever bank account is enabled with UPI, jinne bhi aapko paise bhejne hai, bas wo uski details feed karein and jhatpat sab ho jayega meri jaan. This is amazing. On that note, amazing gaane bhi sun lo ji.
1: Kya bolti tu?
2: क्या मैं बोलूं?
0: देखते हैं ये क्या बोलते हैं और फिर ये भी आ रहा है.
2: एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है.
0: उड़ता पंजाब से एक कुड़ी ब्यूटीफुल गाना. एब्सोल्युटली क्रेजी ट्रैक.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम अजमल राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Danisha. अलका याग्निक और आमिर खान की आवाज में गुलाम मूवी से एक क्या बोलती तू ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है अब टेक टॉक में इंस्टाग्राम की बात करेंगे. सो वीकेंड पे इंस्टाग्राम ने ये किया है, मतलब हमारा वीकेंड था पर उनका नहीं था, थर्सडे को ही कर दिया था ये रात को. इंस्टाग्राम ने अपना जो फॉन्ट है वो चेंज कर दिया इंस्टाग्राम का 10 साल के बाद. एंड ज़करबर्ग खुद आए थे बताने के लिए, मुझे पर्सनली नहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे, और फिर एडम मोज़ेरी ने भी पोस्ट किया था उसके बारे में. एंड देन आई वेंट टू दैट फॉन्ट एंड इट एक्चुअली लुक्स रियली नाइस. देर इज़ अनदर ऑप्शन, अगर आप उस इंस्टाग्राम के फॉन्ट पे ऐसे ज़ोर से टैप करके रखेंगे ना तो आपको बहुत सारे न्यू लोगों के ऑप्शंस मिलेंगे, बट वो ऑब्वियसली पेड सर्विस है सो डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि जो है वो बढ़िया है. एंड लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये क्या है, आर के साथ क्या दुश्मनी थी, ये पूरा क्यों नहीं नजर आ रहा है. बट आई काइंड ऑफ लाइक इट, इट्स वेरी क्लासी मिनिमलिस्ट. आई डोंट नो, आई रियली लाइक दिस न्यू फॉन्ट. आपका क्या ओपिनियन है अगर आपने नोटिस किया है तो? बाकी दूसरे ब्रांड्स ने भी शुरू कर दिया है इसके साथ खेलना, आजकल ट्रेंड बन गया ना, किसी एक ब्रांड ने कुछ किया सब उसको फॉलो करेंगे. सो या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द ट्रेंड. सबने अपना लोगो चेंज नहीं किया है लाइक दैट, बट या इंस्टाग्राम हैज डन. अगर आपने उसको चेकआउट किया है तो आपका क्या ओपिनियन है, कैसा लगा आपको, ये जानना चाहूंगी मैं. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आवाज में फिर हेरा फेरी से मेरी जहरा जुबी ओनली ऑन रेडियो 101.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर 27th of August याद रखो ये डेट ठीक है क्योंकि हम मिल रहे हैं एंड अपने बच्चों को फटाफट से रजिस्टर करवा दो बैक टू स्कूल बैच के लिए 27th August को होने वाला है अबू सुद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक रजिस्टर करने के लिए क्या करना है बहुत छोटू सा काम है यार olive.qa दैट इज आर वेबसाइट आप उस पर जाइए वहां पर आपको बैक टू स्कूल का बैनर नजर आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा उस फॉर्म में आप सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए एंड दैट्स इट यस मेरी जान बहुत कम स्लॉट्स हैं और बहुत कम वक्त है तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो वरना रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे फिर आप आके गिला करोगे कि तनीषा ऐसे नहीं होता है यार तो पहले बता रही हूँ प्लीज कर लो यार ठीक है और अगर नहीं मिल रही है वेबसाइट बहुत ही कष्ट हो गया जीवन में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो 3311106 पर मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भेज दूंगी ठीक है आई कैन डू दैट मच फॉर यू यार प्यार हो यार आप
1: Venue partner, Abu Sudra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sudra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles. Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

Amit Mishra, Shalbaraki Vazmi Bulia from the movie Adila Mushkil, beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindas Morning chal raha hai. Yahan par 9:52 ho chuka hai ji. Mere jaane ka waqt ho gaya hai aur Kashish ke aane ka waqt ho gaya hai. Aap apna khayal rakhiyega. Jaate jaate yahi kahungi. Stay hydrated. लाइट खाना खाएं, सनस्क्रीन लगा कर रखें जब भी बाहर निकलें और बस उतना ख्याल रखें, आप इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को कभी ना भूलें. एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, radioolive.qa इज़ दी हैंडल. वहाँ पे हम वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो पार्टिसिपेट कर लो. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग. अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू हैवंट बैक टू स्कूल बैच के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर कर लो, olive.qa पर जाने का है. एंड वहाँ जाकर सारी डिटेल्स फिल कर दो और बस हो गया काम. हाँ जी, बाकी सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ एंड जियो बिंदास मेरी जान.

90s के गानों के साथ शो की शुरुआत कर दी हमने, इससे अच्छी शुरुआत और कैसे हो सकती है यार, आप ही लोग बताइए मुझे। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। बाकी आज बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, बहुत सारे हेल्थ मिथ है उन्हें ब्रेक करने वाले हैं, आपके स्ट्रेस को दूर भगाने वाले हैं, आपका ओपिनियन जो है वो जानने वाले हैं हम काफी सारी चीजों पे। बाकी फैशन की और मूवीज की बातें तो होगी हर रोज की तरह, सो आप जो है बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए कि फोन उठाइए और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। ये तो कविता जैसा हो गया ना। 1063 is my number, 3311063। जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी से मैसेज कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस पढ़ पाऊँ, जल्दी जल्दी मुझमें जो है और ज्यादा एनर्जी आ जाए ताकि मैं आज शो पे आपको और ज्यादा एंटरटेन कर सकूँ। और देखो यार, एंटरटेनमेंट जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, बॉडी में ऑलरेडी आयरन की, मैग्नीशियम की और बहुत सारी चीजों की कमी चल रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी ना मेरा दिमाग ना मेरा दिल झेल पाएगा। सो फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाले गाने से जो है अपने शो की को आगे बढ़ाते हैं, एंड वेलकम टू द जंगल का एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। ये गाना सुन के ना अक्सर मुझे पता नहीं क्यों सैलरी की याद आ जाती है, सो ये गाना आप एंजॉय करके आइए एंड उसके बाद जो है हम बातचीत जारी रखेंगे। ये जो है बात करेंगे कि ये जो मौसम है बाहर, क्या ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है या इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, एंड फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय कीजिए एंड कह दे रही है जियो बिंदास।

0: Time check. Brought to you by Danat Al Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.

0: यार धड़क मूवी में कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन गाने तो बहुत ही अच्छे हैं एंड इतने ड्रीमी गाने हैं ना, मतलब सच में हर गाने में एक अलग फील है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, आजकल टेम्परेचर जो है वो फोन वोन से हमें थोड़ा ना पता चलता है, हमें हमारी गाड़ी जब धूप में खड़ी होती है और उसके अंदर आप पहला कदम रखते हैं तब आपको फील होता है कि यार हमारे खाने को माइक्रोवेव के अंदर जब रखा जाता है तो उसे कैसी फीलिंग आती होगी। बस उतना ही गर्म जो है बाहर का तापमान हो रहा है, जितने तापमान पे जो है आपकी चाय गर्म हो जाती है बस उतना ही बाहर टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अलग ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत है जिस वजह से फीलिंग जो है वो और ज्यादा गर्म गर्म है। सो इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में 41 डिग्री सेल्सियस, आज का हाइएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 43 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस। सनस्क्रीन लगाने की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी एंड एक ही आपके लिए मेरा एडवाइस है कि आप जो है पानी बहुत पीते रहें एंड देखिए धूप से एकदम से जब अंदर आए एसी में तो जो है पानी ना पिए, उससे जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आता है एंड इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तो कि जैसे ही आप बाहर धूप से गर्मी से अंदर आ रहे हैं तो एकदम से एसी में ना आए, थोड़ी देर जो है किसी ऐसी छांव वाली जगह पे जो है खड़े रहिए जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद नॉर्मल पानी पीना है आपको, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को जो है वो बचा सकते हैं इस गर्मी के मौसम के चलते। बाकी देखिए कुछ दिनों की बात है, हर वक्त बीत जाता है, ये गर्म गर्म वक्त भी बीत जाएगा, बच्चों की समर वेकेशन जो है वो भी खत्म हो ही रही है तो समर भी खत्म हो जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल इस हीट को बीच करने के लिए म्यूजिकल बीच का सहारा ले रहे हैं हम, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड बाकी आपकी कशिश के साथ खेलते रहिए। जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

ऐसा लग रहा है मैंने ना टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं अपने पापा के जमाने में जा चुकी हूँ, बिकॉज अमेजिंग वाले 90s के गाने जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल स्पेयर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले यानी ब्रेक पे जाने से पहले और गानों से पहले हम बात कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे माइक्रोवेव में बैठ गए हो। लेकिन इस गर्मी से जो है डील करने का एक तरीका है, हाँ ऑफकोर्स मेरे गाने तो हैं ही, लेकिन साथ में वाटरमेलन जो है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या नई बात बता दी आपने, ये तो हमें पता ही है, हम तो रोज वाटरमेलन जूस भी पी रहे हैं। लेकिन देखिए, अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि वाटरमेलन इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फूड्स ऑन अर्थ, यानी अगर आप अर्थ पे रहते हैं और आपको मोस्ट पावरफुल फूड के बारे में जानना है तो वाटरमेलन उनमें से एक है। राइट, वाटरमेलन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको गर्मी से बचने में हेल्प करती है। एंड एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पर वाटरमेलन को फ्रूट से ज्यादा जो है मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता था, स्पेशली गर्मी के टाइम पर। अब वाटरमेलन में जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको लो कर देता है, आपको कैंसर सेल से बचाता है, एंड आपकी किडनी को भी क्लीन करता है, एंड आपके मसल्स को भी रिपेयर करता है। एंड ये भी सिर्फ जो है एक बार जब आप वाटरमेलन खाते हो उसके बाद ही ये सब होना शुरू हो जाता है। अब साइंटिस्ट का कहना यह है कि आपको 30 दिनों तक अगर आप वाटरमेलन खाते हैं तो आपकी किडनीज जो है वो क्लेंस हो जाएंगी, आपके हार्ट को की जो है रिकवरी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगा, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए अगर आप वाटरमेलन जूस जो है वो पीते हैं, प्लस अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं एंड लाइम जूस जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, एंड स्पेशली अगर आप लंच के बाद इसे खाएंगे तो और अच्छा हो सकता है। अब देखो हर एक इंसान की ना बॉडी अलग होती है, सो हो सकता है कि ये अगर मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए नहीं भी करे। सो एक बार ट्राई कीजिए, वाटरमेलन तो फ्रूट है, ज़्यादा कुछ आपका जाएगा नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिए, एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, एक लाइट फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है, एनर्जेटिक आप फील करने लग जाते हो, मतलब आपके लिए ये वर्क कर रहा है। सो एक बार वाटरमेलन को जो है अच्छे से यूज़ करके देखो, एंड उसके बाद मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है। बाकी हाइड्रेशन के लिए तो अच्छा है ही, पानी के साथ साथ जो है वाटरमेलन अगर आप खाते रहेंगे तो बॉडी को जो है पानी मिलता रहेगा, टेस्टी पानी मिलता रहेगा। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी, वो बिंदास आने के बाद आपके स्ट्रेस से कैसे डील किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड, जी वो बिंदास।

0: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क. Qatar's number one Asian radio network.

देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी अपने फेवरेट इंसान को, चाहे वो आपकी मॉम हो, डैड हो, आपकी पार्टनर हो, उन्हें हग करने से जो है स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर क्या किया जाए? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब साइंटिस्ट ने जो है ये कहा है कि अगर आप एक पेड़ को हग करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो काफी कम हो जाता है एंड गायब भी हो सकता है। ये बिल्कुल सेम है पेड़ों से बात करने के जैसे। बट अगर देखिए, आप पेड़ को हग नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, कई बार होता है कि आपके आसपास जो है ऐसा पेड़ नहीं है ना, आप पब्लिक में जाकर किसी पेड़ को हग करेंगे तो यहाँ पे तो आपको यू नो जजी आईज जो है वो मिल जाएगी। सो किसी भी नेचुरल चीज से कॉन्टैक्ट बनाने से जो है आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, जैसे घास पे नंगे पैर चलने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, या बस जो आपके घर के पौधे हैं उन्हीं के पास बैठने से भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। सो कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो आप अपने आसपास रख सकते हैं जिससे जनरली आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा या ऐसे नीचे गिर जाएगा। सो बस ये जो है एक बार ट्राई कीजिए, बाकी अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें इंजॉय करते रहिए। आपकी कसूस के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। बाकी थोड़ी सी देर में बात होगी फैशन की एंड मूवीज की भी, लेकिन उससे पहले ऑल अपडेट्स एंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड।

0: Time check. Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11. दैट इज 11:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: देखिए जी, क्या 90s का फील आ रहा है ना, मतलब एक अलग वाली बात है 90s के गानों में, जो मुझे लगता है आजकल थोड़ा सा नमक जो है वो मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि आजकल के गाने बुरे हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन नमक जो है वो थोड़ा सा यू नो मिसिंग है। और कोई बात नहीं यार, ज्यादा नमक जो है वो खाना में नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कसर, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, हर रोज आपके लिए कोई एक अमेजिंग सी चटपटी सी रिसर्च मैं लेकर आती हूँ, तो बस रिसर्चर्स के यू नो खजाने से एक और रिसर्च मैं निकाल के लाई हूँ, जहाँ पर रिसर्चर्स का ये कहना है कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है, यानी एक इंसान जो है उसका दिमाग इंसल्ट्स भूलने में जो है 20 साल लगा देता है। यस, नहीं 20 नहीं, 30 साल। ओके, सो 30 साल लगा देता है, एंड कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो जब इंसान को मिलता है तो वो जो है 30 दिन भी याद नहीं रख पाता, यानी अच्छी बातें जो है वो 30 दिन में भुला दी जाती हैं, लेकिन दिल को तोड़ने वाली बातें, इंसल्ट वाली बातें जो है ना वो याद रहती हैं 30 सालों तक। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? बाकी इसके पीछे के जो साइंस है वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। आप मुझे बताइए 3311063 पर कि क्या ये रिसर्च आपको सही लग रही है। सो बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यस या नो आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर व्हाट्सएप पे। और अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। देखो यार, मुझे तो इस बात से कोई यू नो एक अलग मतलब फैक्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लग रही है रिसर्च। बिकॉज कई बार क्या होता है, सोते सोते अचानक से मैं फुल नींद में हूँ और अचानक से मुझे जो है मेरी 6th क्लास में किसी ने मुझे जो है बोल दिया होता है कि मैम इसने अपना होमवर्क नहीं किया है, और मुझे जो जो फीलिंग आई थी मुझे अचानक से याद आ जाती है और मुझे बुरा लग जाता है। 6th स्टैंडर्ड की बात से बुरा लग रहा है मुझे आज, सो कितना ही बुरा लग रहा होगा, है ना। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके कि यार आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या आपको ये वाली रिसर्च सही लग रही है या नहीं लग रही है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जितनी भी गर्ली पॉप्स मुझे इस वक्त सुन रही हैं उनके लिए दिल धड़कने दो मूवी से गर्ल्स लाइक टू स्विंग। सो ये गाना एंजॉय करके आओ, उसके बाद बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

गाने तो कमाल कमाल सुन रहे हो, आपका भी बढ़िया है ना कि मस्त ड्राइव करो गाने सुनो, काम करो गाने सुनो। मेरा भी बढ़िया है, गाने सुनाओ काम करो, गाने सुनाओ काम करो। वैसे एक जो है रिसर्च पे हम बात कर रहे थे कि दिमाग जो है वो इंसल्ट्स को 20 सालों तक याद रखता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट को 30 दिनों में भूल जाता है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं और मैं जो है मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। अब देखिए यार, ये कहा जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स जो है वो आपके दिल और दिमाग पे ऐसा असर जो है वो डालते हैं कि वो सालों साल तक आपके दिल में आपके जहन में रहते हैं। एंड जो आप इंसान कभी आपकी तारीफ कर देता है तो वो आप मैक्सिमम 30 दिनों तक यानी एक महीने तक जो है याद रख पाते हो, उसके बाद भूल जाते हो। बिकॉज उसका जो आपके नर्वस सिस्टम पे असर होता है वो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सो अगर किसी ने आपकी तारीफ करी है और आप एक लंबे समय तक खुश हैं, मतलब उस इंसान की बातों का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा होता है। एंड इसका अपोजिट होता है इंसल्ट में, अगर आप किसी इंसान को जितना कम जानते हो और अगर वो आपकी इंसल्ट ज़्यादा करता है तो आपको और ज़्यादा बुरा लगता रहता है। तो देखो यार, बस यही मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये रिसर्च सही है या नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है तो आइए इनके मैसेजेस जो है वो पढ़ लेते हैं। वैसे लियाकत जी ने लिखा है यस, रीज़न नहीं दिया है पर उन्होंने लिखा है येस, और मुझे लगता है इनका येस ही काफ़ी है। एंड बहुत सारे लोगों ने और भी मुझे मैसेज किया है, सबका कहना वैसे येस ही है कि हाँ देखिए हम जो है वो भूल जाते हैं अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, लेकिन अगर बुराई करता है या इंसल्ट करता है तो हमें सालों साल याद रहता है। मैंने जैसे आपको बताया ना मेरा एक्सपीरियंस, एक बार क्या हुआ था कि मुझसे जो है पानी, मेरी बॉटल जो है वो टूट गई थी एंड वो स्कूल में गिर गई थी एंड सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे। तो अब जब भी पानी भरती हूँ ना मुझे वो चीज़ याद आती है, पता नहीं क्यों। मेरी खैर किसी ने ऐसे 1-to-1 पर्सनल इंसल्ट कभी की नहीं है, बट अगर मुझे एक बॉटल की बात से इतना बुरा लग सकता है तो फिर यार किसी और इंसान की बात पे तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिलहाल देखिए ये डू यू नो वाली बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है डू यू नो वाला जो गाना है वो भी आप लोगों के लिए मुझे प्ले करना चाहिए। इसीलिए हाउसफुल 2 का ये गाना जो है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, बहुत फन गाना है, इसे एंजॉय करके वापस आइए। उसके बाद जो है हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान का। एक्चुअली आज बहुत सारे स्पेशल लोगों का बर्थडे है, सो उनके बारे में बात करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

देखिए दिल से तो गलती हो ही गई ये समझने की कि 90s में या 90s के पहले जो है जब मूवीज आया करती थी तो वो बहुत क्रिंज होती थी, स्पेशली गोविंदा की और डेविड धवन की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अगर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हो और आपको बॉलीवुड कॉमेडीज बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आज कल थोड़ी सी मिसिंग सी लग रही है, सो आज डेविड धवन जी के बर्थडे पर उनकी तीन सबसे बढ़िया मूवीज, मतलब मेरे लिए जो सबसे बढ़िया मूवीज है जो मैंने देखी है मुझे सबसे अच्छी लगी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे लेस क्रिंजी मूवी पे हम बात करेंगे, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। सलमान भाई है, कैटरीना है, अमेजिंग गाने हैं एंड डेविड धवन की मूवी है तो गोविंदा कैसे नहीं होंगे। सो आप जो है पार्टनर मूवी जो 2007 में आई थी ये देख सकते हैं। यस, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, यही वाली मूवी है। एंड लव गुरु के रोल में सलमान खान परफेक्टली जो है वो बैठते हैं। एंड एक अनयूजुअल पेयर हमें देखने को मिला था इस मूवी में जो है कैटरीना का एंड गोविंदा का, मतलब कैटरीना एंड सलमान खान जो है मूवी में है, लेकिन सलमान खान के साथ पेयर ना करके डेविड धवन ने कैटरीना को पेयर किया गोविंदा के साथ। अमेजिंग, पहले आपको लगता है कि यार ये तो ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अमेजिंग लगती है मूवी बाद में। सो एक बार जरूर से अगर पार्टनर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, और देख लिया तो रिविजिट कर लो। उसके बाद 1997 की जुड़वा, जिसका जो है रीमेक बिल्कुल बनाया गया था वरुण धवन के साथ, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर आप एक बार जुड़वा देखिए, सलमान खान अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द अमेजिंग, लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज, कुली नंबर वन 1995 की ये मूवी है, गोविंदा और करिश्मा कपूर, गाने एकदम बढ़िया, कॉमेडी मतलब कॉमिक टाइमिंग अमेजिंग, एंड कादर खान, ओ माय गॉड He is amazing in this movie. So, एक बार इस क्लासिक कॉमेडी को जाके जरूर से देखिएगा। एंड बाकी और क्या चाहिए गाइस, आपकी लाइफ में थोड़ी और खुशी ऐड हो जाएगी। एंड डेविड धवन जी को हैप्पी बर्थडे जो है वो हम विश करते हैं इन मूवीज को देखते हुए, क्योंकि देखिए आप इन मूवीज को जितना भी क्रिंज कह लें या जैसा भी कह लें, ये मूवीज वो है जिससे एक वक्त पे बॉलीवुड को पहचाना जाता था। एंड यही है, जब भी आप थके होते हो, आपको डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखनी, हैवी चीजें नहीं देखनी, आप इन्हीं मूवीज के तरफ लौट कर जाते हो, तो जाओ यार देखो इन मूवीज को। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, और आपकी कोशिश के साथ स्टे ट्यून रहो, कहते रहो जियो बिंदास रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

देखिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जितने अच्छे गाने थे इस मूवी में सभी हमने आपको एक साथ सुना दिए। मैशअप्स का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि सारे अच्छे गाने, सारे फेवरेट गाने एक साथ सुनने को मिल जाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए दुनिया जहाँ की फन खबरें जो है वो मैं आपको आके सुनाती रहती हूँ। सो एक रीसेंट खबर जो मुझे मिली है उसमें मुझे बहुत हंसी आ रही है एंड बहुत अजीब भी लग रहा है कि यार ये कैसे वक्त में पहुंच चुके हैं हम। सो एक एम्प्लॉय को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, एंड ये उसके बॉस ने नहीं किया, ये एक AI ने किया है। यस, सो फर्स्ट AI बॉस लूना नाम की एक AI बॉस है, उसने रूल्स बनाए थे कि कोई भी काम पे लेट नहीं हो सकता है, एक दो मतलब मिनट 10-15 मिनट की देरी चलेगी लेकिन आप ज़्यादा लेट नहीं हो सकते एंड ज़्यादा दिन लेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ ही 5 मिनट लेट आ रहे हो। सो ये एक एम्प्लॉय डेली कर रहा था, वो डेली लेट हो जा रहा था, तो AI जो बॉस थी उसने उसे निकाल दिया, मतलब निकाल ही दिया। एटलीस्ट क्या होता है जब ह्यूमन बॉस होता है ना, वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, वो आपको 4 बार जो है वो बताता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आ जाना, अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हारा टाइम बदलते हैं। AI को कैसे इमोशनली समझाओगे आप, कैसे समझाओगे कि वॉशरूम जो है वो घर में एक ही है और उसके लिए लड़ाई होती रहती है, तैयार होने में इसलिए लेट हो जाता है, कैसे समझाओगे आप? तो बस यही सारी दिक्कतें होती रहती हैं। अब AI बॉस है, उन्होंने निकाल दिया, उनसे तो लड़ा भी नहीं जा सकता, उनको समझाया भी नहीं जा सकता। तो बस वक्त जो है वो अब ऐसा आ गया है कि अब AI से जो है डांट खानी बची है। बस मम्मी की तरह AI भी जो है कुछ दिन में बोल देगी कि बहुत हो गया, फ़ोन रख दो, अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है मैं आ गई ना तो बताऊंगी। सोचो यार, ये बोलते बोलते अभी मुझे रियलाइज हुआ कि किसी दिन हमें कोई सामान नहीं मिल रहा हो और हम बोले कि AI मुझे बताओ मेरा फोन कहाँ है या मेरा फोन ढूंढो, और AI बोले कि वही रखा है, अगर मैं आई और मुझे मिल गया तो फिर देखना, तो फिर तो कितना बुरा लगेगा ना हमें। चलिए इसी एक थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके आइए। उसके बाद एक काम की बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है कि आपको बहुत सारा फन और एंटरटेनमेंट मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
3: ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰਜਨ ਮਾਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ.

0: गाने का नाम छोटा सा फसाना। अब देखिए यार, एक इंसान की मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिसकी लाइफ का भी एक छोटा सा फसाना रहा है, लेकिन उसने हमें इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज दी हैं, एंड इनका जो है एक पर्सनल यू नो कनेक्शन भी है मुझसे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश करी हूँ। हाँ गाइज, हाँ मैंने वादा किया था कि कहाँ रजिस्टर करना है एंटरटेनमेंट के लिए, वो आपको बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। उससे पहले आज किसी का हैप्पी वाला बर्थडे है, उनकी बात कर लेते हैं। सो सैफ अली खान जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, एंड इन्हें जो है भोपाल का नवाब भी कहा जाता है, एंड मैं भोपाल से हूँ। मैंने इनका भोपाल वाला घर जो है वो देखा हुआ है, जिसको रेस्टोरेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। सो एक पर्सनल यू नो पर्सनल वाली फीलिंग आ जाती है कि ओ हम इस इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। बाकी अगर सबकी बात करें तो बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छा खासा काम जो है उन्होंने किया है, एंड मैं अगर बात करूँ 2022 के बाद से सैफ अली खान का एक नया जो है रूप हमें देखने को मिला है, जहाँ पर उन्होंने थोड़े लीग से हट के रोल जो है वो करना शुरू किया, एंड अपना सही पोटेंशियल जो है वो दिखाना शुरू किया है। वरना तारा रंपम, हम तुम और सलाम नमस्ते, ये जो कुछ मूवीज थी ना, इनमें हमने एक जैसा सैफ अली खान को देखा है, एंड वो भी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सीरियसली मैं ये मूवीज वापस जाकर जो है देखती हूँ, एंड आपको बताती भी हूँ कि आज जो है मैं ये मूवी देखकर आई हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे सैफ अली खान की हर मूवी जो है वो अच्छी लगी है। टाइम टाइम पर जो उनकी अलग अलग मूवीज हैं वो आती रहती हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। एक्सपेरिमेंट करना इंसान नहीं छोड़ रहा है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड सैफ अली खान की अगर इंटरव्यूज़ की बात करें ना, तो वो बहुत फन होते हैं, बहुत विटी होते हैं। अगर शाहरुख खान के बाद मुझे किसी के इंटरव्यूज़ बहुत पसंद है, तो वो सैफ अली खान के इंटरव्यूज़ हैं। आप कभी भी जाइए सोशल मीडिया पे, सर्च कीजिए सैफ अली खान के पुराने इंटरव्यू स्पेशली, उसमें वो जेंजी से पहले जेंजी थे, एंड अमेजिंग उनके रिस्पॉन्सेज हैं, फनी विटी। तो एक बार जाके जरूर से जो है देख लेना, एंड हम विश करते हैं सैफ अली खान को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का वक्त हो चला है, तो सोनू निगम की आवाज में एक अमेजिंग वाला ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस

0: गुमशुदा का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुमशुदा का मतलब होता है लॉस्ट उर्दू में। तो अगर आपको भी आजकल लॉस्ट लॉस्ट सा फील होता है कि यार समर वेकेशन खत्म होने वाले हैं, अब क्या होगा, वापस जाने का तो मन सा नहीं कर रहा स्कूल, या आपके बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले उन्हें काफ़ी यू नो ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार अब वापस स्कूल शुरू होने वाले, तो एक बार देखिए फन तो बनता है स्कूल जाने से पहले। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखो मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ। अब समर वेकेशन जो है वो खत्म होने वाले हैं लेकिन फन जो है वो बाकी है। रेडियो ऑल एफएम जो है वो लेकर आया है बैक टू स्कूल बैश अबू सिद्रा मॉल में इस 27th ऑफ अगस्त को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अब यहाँ पर होगा क्या क्या, अगर आप ये पूछने वाले तो मैं बता दूँ कि एपिक गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले एंड नॉन स्टॉप, फिर से कहना चाहूँगी नॉन स्टॉप धमाल होने वाला है। एंड स्कूल जाने से पहले एक बार फन जो है वो हम करने वाले हैं सब साथ में मिलके। सो देखिए आप जो है इनरोल कर सकते हैं अपने बच्चों को, आपको ज़्यादा कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी है एंट्री के लिए, बस आपको olive.qa पर जाकर जो है बैक टू स्कूल फॉर्म जो है वो फिल करना है। बहुत ही आसान सा फॉर्म है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर आपको डालनी होगी एंड उसके बाद हम जो है वो आपको कॉल कर देंगे। लिमिटेड देखिए स्लॉट्स हैं तो जल्दी से अपने बच्चे को एनरोल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि वो फिर बोलेंगे देखिए मेरा फन मिस हो गया और अब मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप झेल पाएंगे। सो जल्दी से olive.qa पर जाइए, बैक टू स्कूल वाला फॉर्म भर दीजिए और फिर फ़ोन के पास ही बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए क्योंकि हम आपको जल्दी से कॉल कर देंगे। जल्दी से कॉल जो है वो हम आपको करने वाले हैं। सो बैक टू स्कूल जो है वो आपके लिए लेकर आ गया रेडियो
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
0: तो जी फन करने का एड्रेस आपको बता दिया है। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो वॉल्यूम बढ़ाओ और सेट से जो है एकदम चिपक के बैठ जाओ। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।

0: स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

कॉल मी बेस ए ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई थी. मतलब आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है. लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है. सो मैं यहाँ से चलती हूँ, वही कहूंगी जो हर रोज जाते जाते कहती हूँ कि यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना और मुझे याद करते रहना. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओ, वहां जाके फॉलो बटन दबा दो, वहां पर आपको सारे आरजेस मिल जाएंगे. हमारा ऑफिस का फन आपको देखने को मिल जाएगा, अमेजिंग कॉन्टेंट आपको वहां पर मिल जाएगा. बाकी अगर याद फिर भी सता रही हो तो 3311063 पर जब चाहो तब मैसेज कर सकते हो, मैं तो पढ़ ही लूंगी यार. फिलहाल देखो ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आपको मैं सुना रही हूँ. वही गाना है जो अक्सर आपके मन में आता होगा मुझे सोचने के बाद कि क्या कमाल लड़की है यार, ये क्या कमाल है. सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास, तारा बाय बाय.

0: 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फिर से स्कूल? अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: and Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कम

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम किक स्टार्ट करने वाले हैं ऑलिव रिचार्ज को। बहुत सारी बातें करेंगे, किससे सुनाएंगे, खबरें शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए चलिए ऑलिव रिचार्ज को शुरू करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और देखिए, एक चीज मैं जानता हूं, मानता हूं और मुझे पता है कि सही में अगर इस एक दुविधा का कोई एक समाधान होता तो लाइफ थोड़ी और बढ़िया हो जाती। ठीक है, ऑफिस से घर तक का कम्यूट या फिर घर से ऑफिस का कम्यूट सही में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी कभी अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो मूड भी ख़राब हो जाता है, वक्त भी निकल जाता है, दिन भी निकल जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। और बहुत लंबा कम्यूट अगर आपका रहता है होम टू वर्क और वर्क टू होम, तो फिर दिक्कत थोड़ी रह जाती है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो हमें नहीं मिल पाता वापस। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस के पास ही शिफ्ट हो जाते हैं। और एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि ये ऑफिस से घर का कम्यूट जो है या फिर घर से ऑफिस का कम्यूट जो है, ये सही में एक बहुत ही साइलेंट तरीके से हमारा टाइम जो है छीन लेता है। और इसलिए इसके बारे में लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई ऑफिस जो है अपना वर्क टाइम बढ़ा देता है, तो उसके हिसाब से उन्हें अपने निकलने का वक्त भी बदलना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जो ऑब्वियसली कंपनी को तो समझ में आएगी नहीं। बट हाँ, मगर स्विट्जरलैंड में एक काफी बढ़िया तरीका मैंने देखा, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अब यही बात करते हुए, मैसेजेस कीजिए, गाने सुनिए, चिल करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे थोड़ी देर पहले हम ऑफिस से घर जाने का, फिर घर से ऑफिस जाने के कम्यूट के बारे में बात कर रहे थे। तो स्विट्जरलैंड में एक सिटी है बेसिल करके, ठीक है। उस सिटी में राइन करके एक रिवर जो है फ्लो करती है, और उस सिटी के ऑक्यूपेंट्स जो है, जो वहां पे रहते हैं, वो जब अपने ऑफिस से घर जाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, एक वाटरप्रूफ बैग में अपने कपड़े अपने सामान सब रख के उसको यूज करके राइन रिवर में जो है खुद जाते हैं, और उसके थ्रू रिवर के फ्लो के थ्रू एक दूसरे पॉइंट पर जाके वापस जो अपना कम्यूट कंटिन्यू करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। तो यानी कि नेचर का यूज करते हुए एक लेजर भी हो रहा है, स्विमिंग भी कर रहे हैं, हेल्थी भी है, फन भी है, बट इसमें बहुत सारे कैचेस हैं, ठीक है। राइन रिवर जो है काफ़ी पावरफुल फ्लो वाला एक रिवर है, तो अथॉरिटीज़ ने सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं, एंट्री पॉइंट्स और एक्सिट पॉइंट रखे हैं। इसके आगे जो है लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डेंजरस रिस्क ना ले करके। बट anyway, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका लगा। एक तो लोग ना बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए या फिर चिल करते हुए, एंड इट्स अ गुड फिजिकल एक्टिविटी। स्विम करना बहुत ही बढ़िया एक एक्टिविटी है जो आपके पूरे दिन के स्ट्रेस को भी अच्छे से रिलीफ कर सकता है। और यही बात बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वीएलसी है एक बहुत बड़ी मिसाल जो मुझे लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए। हम सब जानते हैं वीएलसी हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में यूज किया होगा, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में गाने प्ले करने के लिए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो वीएलसी ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया था। कभी कभी गाने या फिर कोई भी म्यूजिक रिलेटेड या फिर वीडियो रिलेटेड फाइल प्ले करने के लिए हमारे सिस्टम में कोडेक जो होता था उसके लिए रिक्वायर्ड वो नहीं होता था, बट वीएलसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और वीएलसी के जो ओनर हैं जॉन करके, उनको बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिए, मिलियंस ऑफ यूरोज का ऑफर आया कि चलो इसे मोनेटाइज करते हैं, इसमें एड्स लगाते हैं या फिर ये करते हैं, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जनता के लिए है, ये ओपन सोर्स रहेगा, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएगा और बेसिक फीचर के लिए लोगों को एक प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, विच इज सच अ रिफ्रेशिंग थॉट इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि यार लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ निकालते हैं और एकदम से उसे मोनेटाइज करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी कभी R&D के लिए या फिर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कॉस्ट की जरूरत लगती है, इसलिए पैसा हम बना सकते हैं उसमें, बट एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ या फिर एक बहुत ही अच्छा आइडिया के साथ अंधा पैसा बनाना, लोगों को अंधेरे में रखना, इट्स नॉट समथिंग दैट आई सजेस्ट। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विथ आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलि।

0: 14 साल की उम्र में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया, मगर शायद कभी सोचा नहीं था उनने भी या फिर किसी ने भी कि इतना वक्त इस कंपनी में गुजारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस एस्पिनोसा के बारे में, जो 1976 से लेके अभी तक एप्पल का हिस्सा है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। ये एप्पल के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय हैं, और सोच के देखिए को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने तक एक पॉइंट में जो है एप्पल छोड़ दिया था, और इस टेक्नोलॉजी लेजेंड के साथ जो है इन्होंने हिस्ट्री बना दी है क्रिस एस्पिनोसा ने। 50 साल से ये वहीं पे काम कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन किया था, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन करते थे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते थे, एंड इस कंपनी में सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने बिताया है। और काफ़ी कूल लगा यार, मतलब जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं, लेगेसी की बात करते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स सही में बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारे सामने आते हैं। बट ऑब्वियसली एप्पल जो है बहुत ही अच्छे से मॉनिटरली रिवॉर्ड भी करता है, स्टॉक ऑप्शंस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड उसके बाद भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक, इनोवेशन का दूसरा नाम है एप्पल। और ये बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई मैं याद दिला रहा हूं कि सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में, विच इज olive.qa। वहां पे एक बैनर दिखेगा बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है बैक टू स्कूल बैश का हिस्सा बनने का, जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। तो मैं यही बोलूंगा, जाने की इंतजार किस बात का है। स्कूल खुलने से पहले एक वन लास्ट एंजॉयमेंट, फन, थ्रिल इवनिंग जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट जीत सकते हैं। तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हमारे पास भेजिए भाई, मजे करवा के ही भेजेंगे। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: New partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

भाई अभी मेरे मन में एक गाना आ रहा है, गाना है मोहब्बतें मूवी का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, मगर ये बंदा रुका नहीं और उसको रिवॉर्ड भी मिला। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात करने वाला हूं वॉल्टर कार के बारे में, जो एक एम्प्लॉय है बेल हॉब्स करके कंपनी, जो एक मूविंग कंपनी है अलबामा में, और उनका फर्स्ट डे ऑफ जॉब वो निकलते हैं गाड़ी लेकर घर से, मगर कुछ दूर चलते ही गाड़ी जो है खराब हो जाती है और वो बंदा रुकता नहीं है, वो चलने लग जाता है भाई, चलता है चलता है चलता है चलता है और फाइनली वो पहुंच जाता है। अब आपको लगता है कि भाई इससे बड़ी बात क्या है, ये तो छोटी चीज है ना। अब देखिए, उन्हें और कोई राइड उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, बट ही वॉज डिटरमाइंड टू शो, तो उन्होंने चलना शुरू किया और उन्होंने चलते चलते चलते बहुत लंबा एरिया कवर किया, ऑलमोस्ट 20 माइल्स तक वो चलते गए। एंड फाइनली जब वो पहुंचे तो उनके बॉस ने जो है उनके डिटर्मिनेशन को देखकर खुश होकर उसको एक गाड़ी दिलाई। मैं बस यही बोल रहा हूं कि बॉस, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, मैं चल के ही आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कुछ दिन पहले जो है रोनाल्डो की शादी हुई, उसके बाद जो है रोनाल्डो के बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऐसे आने लग गए, वो कैसे लोगों के साथ बात करते हैं। तो एक बहुत ही पुराना वीडियो फिर से जरा सरफेस हुआ है। जापान में जब रोनाल्डो गया था तो वहां पे एक जापानीज लड़का, 13-14 साल का एक जापानीज लड़का जो है टूटी फूटी पोर्चुगीज में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और लोग हंसने लग गए थे। तो रोनाल्डो ने बोला कि आप हंस क्यों रहे हो, वो कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ना एक बहुत बड़ा सच जो है छुपा है समाज के बारे में, ठीक है। अब हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे आसपास में कोई इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है और उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो हम जज करने लग जाते हैं या फिर हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मगर अगर एक जर्मन बंदा, एक जापानीज बंदा या फिर कोई भी नेशनैलिटी वाला बंदा अगर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उन्हें इनकरेज करते हैं, अरे कोई बात नहीं करके। यही इनकरेजमेंट हम अपने लोग के साथ क्यों नहीं दिखाते? सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग हैं, जब कोशिश करते हैं इंग्लिश में बात करने की, और देखिए नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं हमारी, फिर भी जब भी हम उसमें बात करने की कोशिश करते हैं तो जो जानते हैं हमारे ही अपने लोग वो जज करने लग जाते हैं। तो ये एक रवैया मुझे पसंद नहीं आया, और सही में रोनाल्डो से हमें सीखना चाहिए कुछ। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Say what?

0: भाई कभी कभी मुझे ना बहुत जलस महसूस होता है, क्योंकि मेरे टाइम पे बैक टू स्कूल नहीं होता था और हमको बैक टू स्कूल जाते वक्त बहुत ही ऐसा लगता था कि यार हॉलीडे होमवर्क तो किया नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा ये सब। मगर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बैक टू स्कूल बैच जो है फिर से आने वाला है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो 27 अगस्त को होने वाला है बैक टू स्कूल बैच अबू सिद्रा मॉल में, तो इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में विच इज olive.qa, वहां पे जाइए, उस बैनर पे क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का, जहां पे फन होगा, गेम्स होंगे, बहुत ही बढ़िया एक शानदार इवनिंग होगा जहां पे हम मजे करेंगे भाई। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza Partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment Partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: ऑनली लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या किया ये, हा? सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम खोलिए radioolive.qa, सर्च कीजिए, अगर वहां पे फॉलो बटन दिखाई दे रहा है फॉलोइंग की बजाय तो फॉलो बटन दबाइए, एक ही बार दबाना है, और आप हमारे कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अभी हमें सुनते हुए स्टोरी भी डाल सकते हैं, स्टोरी भी हम रीशेयर करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं तो आपके पास प्राइजेस जीतने के मौके भी हैं, और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर, जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, मेरा वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

लो दोस्तों, आ गया है संडे और हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। कैसा रहा आपका आज का दिन और कैसा रहा आपका आज वाला जो फील था जब वीकेंड के बाद, जब छुट्टी खत्म हो जाती है, जब आप ऑफिस आते हैं, तो किसी ने आपका दिमाग तो खराब नहीं किया? वैसे अगर हफ्ते के पहले दिन में कोई आपका दिमाग ना भी खराब करे, आधा तो आपका अपने आप ही रहता है कि यार छुट्टी खत्म हो गई है, एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, राइट? सो 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजो और कुछ भी बताना चाहो अपने बारे में, कुछ शेयर करना चाहो, कुछ वेंट आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। नंबर वही है 3311063। सिमरन कौर आपके साथ, मैं क्या जी जियो बिंदास। कल मैंने एक ऐसा काम किया जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। फिर क्या, थोड़ा सा इंतजार कर लो यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: I'm in number one, Radio Olive.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सो फाइनली मैंने कल एक ऐसा काम किया जो कि शायद मैं अवॉइड कर रही थी, पता नहीं क्यों, बट यस। फिल्म देखी आवारा बंडू। आई नो इमरान हाशमी की फैन मैं भी हूँ, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, लेकिन somehow मेरा ना आवारा बंडू देखने का मन हो नहीं रहा था। तो मेरा और मेरे दोस्त का एक ऐसा सीन है कि मैं उसके साथ वो मूवी जाऊंगी जो सिर्फ उसका मन है, चाहे मेरा मन है नहीं है, और वो मेरे साथ एक बार एक ऐसी मूवी जाएगा जो कि सिर्फ मेरा मन है और उसका नहीं है। तो कल उसका मन था कि यार आवारा बंडू देखनी है, आई एम लाइक ठीक है यार, मैं जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार आवारापन टू फिल्म काफी ज्यादा अच्छी है। आप जो लोग ये बोलेंगे कि यार हमने आवारापन वन नहीं देखी थी या फिर हम भूल चुके हैं उससे, इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एक झलक जो है वो आवारापन वन की मिलेगी, लेकिन जो फिल्म फिर होती है वो अलग ही लेवल पे जाती है। और अलग ही लेवल पे देखो, इमरान हाशमी तो लेके गए, लेकिन एक कैरेक्टर था उसमें जोरावर, जो कि विलन था इस फिल्म का, और उसका पूरा नाम जो है वो पूरन गब्बी है, जो कि मैंने बाद में सर्च किया। मैंने उनसे पहले उनका कोई भी एक्टिंग जो है वो नहीं देखी थी किसी भी फिल्म में, एंड मुझे पता भी नहीं है उनके बारे में। जब मैंने फिल्म देखी, भाई साहब वो बंदे ने पूरा का पूरी की पूरी फिल्म के ऊपर जो है ना वो पूरा राज किया है। मतलब जब भी वो बंदा स्क्रीन पे आता था, उसको स्क्रीन टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिला हुआ है, इमरान हाशमी जितना। तो उन्होंने, मतलब मैं इमरान हाशमी से एक्सपेक्ट करके गई थी, उन्होंने तो किया, लेकिन इसमें जो जोरावर ने कैरेक्टर किया, भाई साहब तालियां यार, बहुत ही मजेदार। अगर आपने आवारापन टू देखी है तो आप समझ रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो गो एंड वॉच यार, अच्छी फिल्म है, मजा आएगा आपको, रिग्रेट नहीं होगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
1: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: समर वेकेशन खत्म होने से पहले आपके बच्चों को हमारे हवाले कर दो। आपके साथ, क्योंकि अब ये समर वेकेशन का फेयरवेल जो है हम करने वाले हैं बैक टू स्कूल बैच के साथ, जो कि होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेकर रात के 7 बजे तक, यानी कि शाम के 7 बजे तक आपके बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा फन जो है वो होने वाला है। एक बार जिससे पहले मतलब स्कूल स्टार्ट हो उससे पहले फुल ऑन फन करवा देंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा, बैक टू स्कूल के लिए आपको, बैक टू स्कूल बैच के लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा। सो स्पॉट्स बिल्कुल लिमिटेड है, फिर जल्दी से जल्दी जो है ये स्पॉट्स फिल हो रहे हैं, फिर बाद में मत कह देना कि यार हमारा चांस नहीं लगा। तो हम आपको बता रहे हैं बार बार, olive.qa पे जाके बैक टू स्कूल के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए और इस तरह से खुद को रजिस्टर करवा लीजिए और फिर इंतजार करिए कॉल का कि आप में से कौन कौन आ रहा है।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Shack Man ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चेक जो है आपकी इंस्टाग्राम के लिए बताने वाली हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे साथ साथ ना अपना इंस्टाग्राम ओपन करिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद ये जो राइट साइड में थ्री लाइन्स आती है उस पर क्लिक करके आपको जाना है अकाउंट सेंटर में। जी हाँ, अकाउंट सेंटर में जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाइए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाके आप सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स है, वहाँ पे लिखा होगा वेयर यू लॉग्ड इन। सो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है किसी अनोन जगह पे आपका अकाउंट लॉग इन हुआ है तो प्लीज उसको लॉग आउट कर लीजिए और सेल्फी वेरिफिकेशन वाला फीचर जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि कोई और आपके अकाउंट का मिसयूज जो है वो ना कर सके। सो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

सीन हमारे इंडिया में भी होना चाहिए भाई, ओवरफ्लो हो जाएगा। उनके लिए कैचअप करने के लिए मार्केट लगती है, टू शेयर मेमोरीज और यू नो रिस्पेक्ट देयर पास, जिनका मतलब अच्छे वाला एंड हुआ है रिश्ता, कि आपको एक दूसरे से जो है वो कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। सो हर साल ये जो है लव मार्केट लगती है, जहां पर अब आप अपने एक्स के साथ मिल सकते हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि आपके दिल में अगर कुछ गलत नहीं था और ठीक है नहीं बनी तो नहीं बनी, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज को शेयर करके ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कुछ रिश्ते जो है वो खत्म होते हैं, जिसमें ये है कि आपका कोई ऐसा बिट्रेयल वाला सीन जो था वो नहीं रहा था। तो ये जो है दिखाऊ वाई लव मार्केट वियतनाम में बहुत ज्यादा फेमस है, साल में एक बार ये मार्केट लगती है। तो यार माहौल तो बन जाता होगा, जैसे इंडिया में बात करें जब वैलेंटाइंस डे आता है तो पेरेंट्स की नजर रहती है ना, कि यार आज के दिन बच्चे अगर बाहर जाने तो पूरा ध्यान होता है, तो पार्टनर की नजर भी रहती होगी यार, ये वाली मार्केट जब आती होगी। सो यार सुनते रहिए रेडियो वाले को, कहते रहिए जियो बिंदास। इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मुझे लग रहा, भाई साहब अलग लेवल का सीन हो जाएगा फिर।

0: पजामा।
1: सो क्या है आज के मौसम के हाल, चलिए चेक करके बताती हूँ।
2: मौसम आपके सुनो, मौसम आपके सिमरन के साथ सुनो।
1: सुना देते हैं सोनियों की दादी हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। सो आज दिन में टेम्परेचर जो था वो मतलब फील्स लाइक 48 डिग्री हो गया था। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस बाय द वे, एंड ह्यूमिडिटी है 31% और मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ह्यूमिडिटी की बात करें सो 7 बजे के अराउंड 53% ह्यूमिडिटी होगी, या 9 बजे के अराउंड 59% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, और रात के 11 बजे 61% ह्यूमिडिटी, और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है 70-75% जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। सो ह्यूमिडिटी है जो अभी मेन विलन बनी हुई है इस वेदर का। सो या पानी वानी पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: चलिए एक और जेन जी स्लैंग को डिकोड करते हैं।
1: जेन जी डिकोडेड
2: हाँ
0: जी आपके साथ मान लीजिए कि किसी चीज से आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है लाइक आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इट। अगर आप उसको जेंजी स्लैंग में बोलोगे दैट्स सो ब्रेन रॉट यस आप इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको जेंजी स्लैंग जो है वो काफी ज्यादा कूल लगती है लेकिन होती तो है बट जैसी वो दिखती है ना वैसा वो फील मतलब आपको नहीं समझ लगता है उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। सिमरन कौर आपके साथ मैं गजीत जी हूं बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: आजकल जो एक चीज वायरल हो रही है, चीज नहीं एक्चुअली एक इंसान वायरल हो रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हां जी रिसेंटली जब वो एक शो पे उन्होंने एक पॉडकास्ट पे राज शमानी के पॉडकास्ट पे जो कुछ बोला वो भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है यार। पागल तो मैं बना दूंगा। माय गॉड। सो अगर आपने अभी तक रवि किशन के वो वायरल डांस वीडियो या फिर उनमें जो भी वो बोलते हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सोशल मीडिया क्या देख रहे हो यार। मत ट्रेंड कर रहा है बंदा यार। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Year.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो फिल्म का नाम है खामोशी। जिसमें नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, सलमान खान, हेलेन, बहुत सारे कैरेक्टर जो थे। सो खामोशी फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी है अभी भी आप देख सकते हैं। सो या ये फिल्म की बात करें तो सेम ईयर जिसमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला में यहाँ पे फादर एंड डॉटर का रोल किया था, सेम ईयर उन्होंने अग्निसाक्षी में हस्बैंड एंड वाइफ का रोल भी किया था। हेलेन ने इस फिल्म में रोल के लिए इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सलमान खान जो उनके स्टेप सन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यू नो, इस फिल्म में आपको काम करना है। लेकिन ये पहले संजय लीला भंसाली थी ना, वो चाहते थे कि ये रोल जो है वो माधुरी दीक्षित करे, और लेकिन माधुरी दीक्षित ने समहाउ इस फिल्म के लिए रिफ्यूज कर दिया। लेकिन फिर भंसाली के पास कोई और ऑप्शन ही रहा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस फिल्म में मनीषा कोइराला जो है वो काम करने वाली है। और भी इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हाँ जी मैंगा जी सुनियो कि दादी की हाल चाल। म्यूजिक किधर है यार, इसके बगैर मजा नहीं आता। वो अपने बच्चों के साथ जाके डोर टू डोर जो है वो सामान बेचती है, राइट। सो ये सीन जो था वो एक्चुअली संजय लीला बंसाली की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था कि बचपन में वो भी अपनी सिस्टर के साथ, अपनी माँ के साथ डोर टू डोर सामान जो थे वो बेचने जाते थे। एंड सुतापा सिकंदर जो कि इरफान खान की वाइफ थी और उस टाइम पे ये फिल्म के राइटर के तौर पे जो थे वो काम कर रही थी और अपने हस्बैंड इरफान खान को जो थे वो पुश कर रही थी ताकि फिल्मों में उनको रोल जो है वो मिल सके। सो नाना पाटेकर ने उसका एफर्ट जो था वो नोटिस किया और उसने बोला सुतापा को कि सिकंदर जो इरफान है वो एक दिन बॉलीवुड में बहुत बड़े स्टार जो है वो बनने वाले हैं। सो या इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं करती रहूंगी, आप सुनते रहोगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है यार। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बिल्कुल लेकिन जैसे ही आपको जरूरत होगी, जैसे उनको पता लगेगा द मिनट दे नो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, भाई साहब वो आ जाएंगे, वो किसी तरह से भी अपीयर हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को वो हल कर देंगे। लेकिन यार ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि जब कोई दोस्त आपका आपको हेल्प की जब जरूरत है तब वो आ जाता है। ऐसे दोस्त के साथ कनेक्शन बना रहना चाहिए ताकि सिर्फ उसको तब ना पता लगे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको तब पता लगे जब उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ताकि आप उसके लिए आके खड़े हो सको, स्टैंड ले सको। लेकिन कुछ होते हैं ऐसी प्रजाति जिनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं बताना, लेकिन आपके दोस्त की लाइफ में अगर कुछ घट गया तो भाई वो कुछ भी करेंगे आपके लिए, लेकिन नॉर्मल डेज में वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। ये थोड़े से अलग लेवल के दोस्त होते हैं यार। सिमरन कौर के साथ जियो बिंदास। अगर मैं बता रही हूँ इस कैरेक्टर के बारे में तो आपके दिमाग में अगर

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: Oh no, phir se school.
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हम

0: हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Wholesale.

0: ट्रैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

चलो जी फिर अब ले लेते हैं आप सबके नाम, क्योंकि कब से आप मुझे सुन रहे हो और कब से मैसेजेस आ रहे हैं आपके। हां जी सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो। तीरथ जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, लियाकत जी थैंक यू सो मच, हबीब जी थैंक यू सो मच, माधवन जी थैंक यू सो मच, जैसा जी थैंक यू सो मच, शशिकांत जी थैंक यू सो मच, संधू जी, अबरार जी थैंक यू सो मच, अरबान जी थैंक यू सो मच, सुरेश जी थैंक यू सो मच, सईदा जी थैंक यू सो मच, हैंजो जी, क्रिस जी थैंक यू सो मच, विक्रम जी थैंक यू सो मच, लरीफ जी, पाली जी थैंक यू सो मच, फूल कुमारी जी, हारिस जी, सुल्तान जी थैंक यू सो मच, अबू बकर भट्ट जी थैंक यू सो मच, रवि जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी थैंक यू सो मच, मुकेश जी थैंक यू सो मच, विनायक जी थैंक यू सो मच, मुजाहिद जी, दानिश जी, इमरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मनी जी थैंक यू सो मच, अवंतिका जी थैंक यू सो मच, आसिफ जी थैंक यू सो मच, हुसनैन जी थैंक यू सो मच, जल्टन जी थैंक यू सो मच, अहमद जी थैंक यू सो मच, आलम जी थैंक यू सो मच, अदील जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों ने मेरा नाम ले लिया, अब आप बेटा थैंक यू लिखो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। दैट्स इट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm a number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आपके घर पे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उधम मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं और इनका स्कूल चालू नहीं हो रहा है क्योंकि इनको एक आउटिंग की जरूरत है जो कि रेडियो ऑलिव करवा रहा है। क्योंकि समर वेकेशन खत्म होने से पहले आपके बच्चों को एक और फन चाहिए बाहर निकलने का, गेम्स खेलने का और मजा करने का। ये 27 अगस्त को होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, जहां पर आपके बच्चे बहुत सारा फन करने वाले हैं बैक टू स्कूल बैश में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसमें आए, पार्टिसिपेट करें, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप olive.qa जो कि हमारी वेबसाइट है, olive.qa पे जाके बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, तो जितना जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर करवा लीजिए एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, फिर आप लोग अटेंड करेंगे और फन करेंगे।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हां जी, मैं गिरी सोनियों की दादी की हाल चाल पे जा रहा हूँ। आई एम गोना मिस यू। ये मिस यू क्या होता है? रेडियो वाली के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फिर मिस यू करने का मौका ही नहीं देंगे हम। मैं कह रही सुन रही हूँ कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल। एंड जबरदस्त इवनिंग्स में मैं आपको बताऊंगी कि एक भी दिन आप जबरदस्त इवनिंग्स मिस मत करिएगा, वरना अपन नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप मिस करने का मौका ही ना ला सके। मतलब रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है तो 24/7 एक तो म्यूजिक चल रहा है। आप जहां पे भी हो, वेकेशन में हो, जहां पर आप इंडियन म्यूजिक को मिस कर रहे हो, हमारे शोज को मिस कर रहे हो, तो आप एप्लीकेशन ऑन करो तो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। एंड अगर कुछ नया हम कॉन्टेस्ट वगैरह लेके आ रहे हैं और इवेंट होने वाला है जहां पर आप छुट्टी से वापस जब आए और वो इवेंट हो जाए और आपको पता ना लगे, तो फिर वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ना। और आप इंडिया में बैठे बैठे रजिस्टर करवा सकते हो अगर तब तक आप वापस आने वाले हो। अगर आप पाकिस्तान में भी गए हो और इवेंट जो है आपके आने के बाद होगा, लेकिन आपको रजिस्टर पहले करवाना, तो आपको पता लग जाएगा। सो मेक श्योर कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: चलो बेबी डॉल, अब 4 घंटे अपने जो थे ना वो खत्म हो गए हैं। लेकिन कल मंडे शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। जबरदस्त इवनिंग्स में बहुत सारी गल्ला मैं फिर तो लेके आवांगी, क्योंकि मेरिया गल्ला खत्म नहीं होंगी है। अपना अपनी पंजाबी की बैटरी चार्ज जी है वो हमेशा होंगी रहती है। सो 2 घंटे जो है अगले मिडनाइट लाउंज को दीजिए और इंजॉय करिए एकदम मस्त वाला म्यूजिक। सो ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा, खाने पीने रो ऐश कर दे रो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो 104.5 पे

Good evening. You are listening Radio All Over 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. संडे का एक अजीब सा सीन होता है. अलार्म बजता है, आप रेडी होते हो, ऑफिस पहुंच भी जाते हो, लेकिन दिमाग बोल रहा होता है भाई कल तो सैटरडे था. कतर में फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होने की वजह से संडे एक्चुअली वर्क वीक का फर्स्ट डे हो जाता है, राइट? और शायद इसीलिए संडे को ट्रांजिशन जो लेना है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है. दो दिन आप अपने टाइम पर जीते हो, फिर सडनली ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस और स्केड्यूल्स वापस आ जाते हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग थॉट भी है, क्या हम संडे को इसीलिए टायर्ड फील करते हैं क्योंकि काम डिफिकल्ट है, या क्योंकि हम वीकेंड से वर्क मोड में ट्रांजिशन प्रॉपरली कर ही नहीं पाते? मे बी संडे को मंडे जैसा ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्रेश बिगनिंग समझने की जरूरत है. आप बताइए, संडे को आपका दिमाग ऑफिस में होता है या अभी भी आपको वो वीकेंड वाला सोफा याद आता है? बाय द वे, मेरे लिए संडे इज अ ब्यूटिफुल डे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले 5 दिन मैं और आप खूब सारा काम करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, अपने अपने टारगेट्स को और ज्यादा अच्छे से अचीव करने वाले हैं. सो मुझे तो बहुत मजा आता है संडे को. आप मुझे बताइए कि आपका संडे कैसा रहा. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM 3311 1063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

Good evening. Welcome back. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. Subah aankh khulti hai aur health automatically phone ki tarah WhatsApp, Instagram, emails, news aur kabhi kabhi to hum duniya ke bare mein sab kuch jaan chuke hote hain. Before we have even asked ourselves how we are feeling. Phone subah subah uthana is very difficult. Phir aapke kuch minute, kuch ghante, kuch seconds aapko pata hi nahi chalenge. Sochi aapke din ke pehle 10 minute mein jo cheeze enter karti hain wahi aapke mind ka first conversation ban jati hain. Isiliye kal ek chota sa experiment kijiye. Phone uthana thoda delay kijiye. I know ki matlab thoda difficult hai. Alarm phone mein hota hai aur sabse pehle phone hi dekhte hain. Pehle chai pijiye, thodi khamoshi, window se bahar dekhiye aur bas decide kijiye ki aaj ka mood duniya decide karega ya aap. मतलब क्योंकि समटाइम्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेसफुल डे स्टार्ट ना करें. वी व्हेन वी स्टार्ट इट शुड बी यू नो वेरी साइलेंट, वेरी नाइस डे. सो आप उठते ही सबसे पहले क्या चेक करते हो? फोन, टाइम, मैसेज या अपने घर के लोगों को? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

हर ऑफिस में ना एक इंसान होता है ऑफिशियली कॉलीग बट प्रैक्टिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. बॉस का मूड खराब हो उसको पता, लंच का प्लान उसको पता है, आपका पर्सनल ड्रामा अनफॉर्चुनेटली वो भी उसको पता है. और इंटरेस्टिंगली एक रिसर्च सामने आई थी, गॉलप रिसर्च, जिसने ढूंढा कि हैविंग अ क्लोज फ्रेंड एट वर्क इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद एंगेजमेंट एंड अदर पॉजिटिव वर्क प्लेस. मतलब जो आउटकम आता है उसको लेके देर मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाइलाइट्स ये हैं कि ट्रस्ट एज अ सेंटर पार्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्क प्लेस फ्रेंडशिप. मतलब ऑफिस फ्रेंडशिप सिर्फ चाय और गॉसिप नहीं होती, कभी कभी वो स्ट्रेसफुल डे को मैनेजेबल बनाता है क्योंकि सैलरी आपको जॉब में रखती है लेकिन अच्छे लोग जॉब को मतलब इंसान की तरह बना देते हैं. आपके ऑफिस में वो कौन है जिसके बिना मंडे संडे कोई भी दिन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट और लॉन्ग लगने लग जाता है. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज.

0: love.
1: ये है Midnight Lounge.
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. कभी कोई ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग सुना है या 70s की कोई फोटोग्राफ देखी है और सडनली दिल ने कहा हो यार मुझे ये जमाना मिस हो रहा है. सो प्रॉब्लम, आप उस जमाने में थे ही नहीं, लेकिन इस फीलिंग को इस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है, विच इज नॉस्टैल्जिया इज़न्ट ऑलवेज जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग योर ओन पास्ट. कभी हम एक इमेजिन पास्ट को भी रोमांटिसाइज करते हैं. ओल्ड कैफेज, स्लो कॉन्वर्सेशंस, लेटर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स, ऐसा लगता है लाइफ है सिंपलर, मतलब उस टाइम पर, ठीक है. और साइकोलॉजिकल रिसर्च सजेस्ट करती है कि नॉस्टैल्जिया कैन स्ट्रेंथन आवर सेंस ऑफ सोशल कनेक्शन और मीनिंग एंड बिलोंगिंग्स. शायद इसीलिए पुरानी दुनिया हमें अट्रैक्ट करती है, नॉट बिकॉज इट वॉज परफेक्ट, बिकॉज वी इमेजिन इट वॉज स्लोअर. आपको कभी किसी ऐसे ज़माने की नॉस्टैल्जिया हुई है जिसमें आप खुद कभी रहे ही नहीं हो और आपको बस लगता है कि यार क्या ज़माना था. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, 3311063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है मिडनाइट लाउंज और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ। कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गए हो, प्लान था बस एक घंटे का, फिर स्टार्टर आए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर चाय, फिर एक बात बताऊं और जब क्लॉक देखी तो 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो 3 घंटे कभी वेस्ट नहीं लगते, क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशंस का पर्पस जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना नहीं होता, कनेक्शन होता है। आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, आपको बस कोई चाहिए जो कहे कि हाँ समझ रहा हूँ। और शायद इसीलिए कुछ लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे टाइम बिताना पसंद है, जिनके साथ मुझे वो 1 घंटा कब 3 घंटे हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। आपकी लाइफ में वो कौन है जिसके साथ 5 मिनट कॉन्वर्सेशन कभी 5 मिनट होती ही नहीं है? 3311 1063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज।

अच्छा आज रात एक कन्फेशन करते हैं, आप अपनी अलमारी खोलिए और एक ऐसा आउटफिट निकालिए जो आपने शायद पिछले 2 साल से पहना ही नहीं है, लेकिन फेंकना इम्पॉसिबल, ये एक्सपेंसिव है, कभी तो पहनूंगी, इसकी कोई खास यू नो याद है, और वो कपड़ा वापस से आपके वार्डरोब में चला जाता है। बट देयर इज समथिंग डीपर हियर, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह नहीं रखते, कभी वो किसी वर्जन को यू नो कनेक्ट करता है, वो ड्रेस जो किसी स्पेशल डे पर पहनी थी, वो शर्ट जो किसी ट्रिप की याद है, वो जैकेट जो अब फिट ही नहीं आती बट उसकी याद अभी भी आती है। इसीलिए लेटिंग गो समटाइम्स नॉट अबाउट द थिंग, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट चैप्टर हैज़ चेंज्ड। और मुझे ऐसा लगता है ना समटाइम्स कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे यूज़ की अब नहीं बची होती, पर वो हटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके वार्डरोब में वो कौन सी चीज़ है जो आप पहनते नहीं हो बट फिर भी उसे अलग नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं यार कभी तो काम आएगी। 3311063 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

चूज करते हो? स्लीप, फ्रेंड्स, फैमिली, खाना, ट्रैवल करना या एकदम सिंपल रहना? अब देखिए, आज अगला दिन भी निकल गया, संडे भी गया, और आई वॉज थिंकिंग कि मंडे को भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप और मैं मिलके करने वाले होते हैं. सो शायद हमारी पर्सनालिटी का एक ऑनेस्ट वर्जन जो है वो वीकेंड पर दिखता है, क्योंकि वीकेंड ये हमें बताता है कि व्हाट वी हैव टू डू. वीकेंड ये हमें बताता है कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू. और इसीलिए वीकेंड को देखकर किसी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है. सो आज देखिए, वर्क वीक स्टार्ट हुआ और कितनी सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की. अगर कोई आपके सिर्फ वीकेंड को ऑब्जर्व करे तो वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या गेस करेगा? अगर कोई मेरी पर्सनैलिटी गेस करने बैठ जाए ना, तो उसे समझ में आ जाएगा मैं कितनी बड़ी आलसी हूँ. मतलब मैं हर चीज़ प्लान करती हूँ, सोचती हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि ठीक है यार, रहने देते हैं, जाने देते हैं, बस ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है. आप बताइए आपकी वीकेंड पर्सनैलिटी क्या है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: रहे हैं मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: हेलो।
1: सो आज एक शो एंड करने से पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। भाई हम पूरे 5 दिन काम करते हैं, संडे से लेके थर्सडे तक, ठीक है, सैलरी के लिए, टारगेट्स के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, फ्यूचर के लिए, और फिर वीकेंड आता है, 2 दिन निकलते हैं और संडे नाइट हम फिर वही साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमें लगता है कि यार कल फिर मंडे है, और सैटरडे आते आते तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि संडे को बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। तो कभी कभी खुद से पूछना चाहिए, जो लाइफ में मैं बना रही हूँ अपने लिए या मैं बना रहा हूँ अपने लिए, क्या मुझे वो लाइफ एक्चुअली पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, सिटी चेंज कर दो, कंट्री चेंज कर दो, सब कुछ रीस्टार्ट कर दो। समटाइम्स चेंज इज मच स्मॉलर, मोर टाइम विद फैमिली, थोड़ा सा अननेसेसरी कमिटमेंट्स कम कीजिए, एक हॉबी बनाइए, बेटर बाउंड्रीज बनाइए, या सिंपली अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, क्योंकि लाइफ का गोल सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ बनाना नहीं है, उस लाइफ में खुश रहना भी है। सो आज रात का सवाल है, अगर दुनिया आपको जज ना करे तो अपनी करंट लाइफ में एक चीज क्या चेंज करना चाहोगे आप। मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज, जहां संडे खत्म होने से पहले हम थोड़ा खुद से भी मिल लेते हैं। गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love. Yeah, midnight love.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।